0: प्रकार को रसायन केमिकल न मिसाइए शुद्ध र प्राकृतिक स्वास्थ्यश्री चितवन को अत्याधुनिक मिल में उत्पादित शुद्ध तोरी को स्वास्थ्यश्री रिलायबल एग्रो नेपाल पब्लिक लिमिटेड का प्रीमियम उत्पादन है।
1: युनाइटेड अस्पताल बारगंगा चार ठाकुरापुर कपिल वस्तु में बिरामी का लगी सब नया सुविधा
2: कंसल्टेंट फिजिशियन डाक्टर गोविंद रावत छाती तथा श्वास प्रश्वास संबंधी समस्या मुटु रोग मृगौला रोग पेट र आंद्रा को समस्या कलेजो थायराइड र मधुमेह सहित का रोग पूर्ण परामर्श र उपचार
1: हाड जोड़नी नसा तथा बात रोग विशेषज्ञ डाक्टर समीर खान द्वारा हाड जोड़नी संबंधी समस्या हड्डी भाँचिएको रजहरू राख्ने निकाल्ने नसा च्यापिएको लगायत बात रोग विशेषज्ञ सेवा बिहान 10 बजे देखि साँझ 6 बजे सम्म शनिबार बाहेक प्रत्येक दिन परामर्श तथा उपचार सेवा उपलब्ध छ।
3: वरिष्ठ जनरल तथा ल्याप्रोस्कोपिक सर्जन डाक्टर सन्तोष पौडेल द्वारा यस युनाइटेड अस्पतालमा विशेषज्ञ शल्य चिकित्सा तथा परामर्श सेवा उपलब्ध रहेको छ। पित्त थैली में पत्थरी हर्निया एपेन्डिक्स आदि को दूरबीन प्रविधि द्वारा अपरेशन स्तन में गाठागुठी खोका घाउ पाइल्स तथा अन्य शल्यक्रिया संबंधी समस्या भएका बिरामीहरूले शनिबार बाहेक प्रत्येक दिन 10 बजे देखि 5 बजे सम्म विशेषज्ञ डाक्टर सँग परामर्श तथा आवश्यक उपचार सेवा लिन सक्नुहुनेछ।
4: वरिष्ठ प्रसूति तथा महिला रोग विशेषज्ञ ल्याप्रोस्कोपी सर्जन डाक्टर सन्देश आचार्य द्वारा गर्भवती महिला को नियमित जाँच डेलिभरी तथा शल्यक्रिया पाठ्यक्रम सम्बन्धी सम्पूर्ण शल्यक्रिया दूरबीन प्रविधि द्वारा अपरेशन परिवार नियोजन तथा बन्ध्याकरण सेवा महिनावारी गडबडी सल्दो पेट दुख्ने तथा फोहोर पानी बग्ने समस्या को उपचार बाजोपन पाठ्यघर को क्यान्सर को जाँच तथा परामर्श
1: वरिष्ठ एनेस्थेसियोलोजिस्ट डाक्टर सुमन श्रेष्ठ द्वारा क्रिटिकल केयर परामर्श तथा उपचार सेवा
3: अन्य ओपीडी सेवा शनिबार बाहेक प्रत्येक दिन बिहान 10 बजे देखि साँझ 6 बजे सम्म सुन्नुहोस् त मेडिकल अफिसर डाक्टर योगेन्द्र थापा र डाक्टर रोशन कुमार यादव द्वारा 24 घण्टा इमर्जेन्सी सेवा उपलब्ध छ।
2: युनाइटेड अस्पताल बाढगंगा 4 ठाकुरापुर कपिल वस्तु संपर्क 076-550-200 मोबाइल नंबर 98-570-55-138।
1: अब ढुक्क हुनुहोस् विशेषज्ञ डाक्टर को सलाह लिनुहोस् युनाइटेड अस्पताल मै।

0: लसुन का पतिया किनारा लागल गटिया नेमर साली मैया लगई
1: तो जिसके तो मही पताबा
0: पताबा तो चोलो जाय ना छेरा लसुन ससन पने ना काम छोरो
1: मही लास लठा महीने जाय छु ना छेरा
0: जाय
1: महीने जाय छु का
0: चोलो जाय का
1: जाय ना होटा
0: जाय
1: चोलो तो जाय

0: मा धरना बनैबू मै एक मुद्दा डार के महीन से लड़ना बनैबू प्रेम के लड़ाई में कुछ हो जाए कलर से
1: ओहो
0: अपन सुखमु झोंकिन तू हिम भरना करैबू
1: अकेली रात भर कर फिरती फिरती केवल तुहार याद में भुवर ध्यान करे छू सखिया और सहेली से तुहार के लतारी यह हुई मोर राजा कई कसी नहीं छू

0: झूठ की खेती कर लो तो हम तुम जानी जानी
1: तुहर लगता ई मरचू दोबा खाली खाली मोर लैहर हो कालू तुहार ससुराली हमर मैया प्रेम में आगिल बाबा हारी अब तो विश्वास लागल मैं तुहार घर वाली

0: तुहा दिल म धरना बनेबू, मैं एक मुद्दादार के महीन से लड़ना बनेबू। प्रेम के लड़ाई में कुछ हो जाए गलत से, अपन सुखमुख धोखिम तुहिन भरना करेबू।
1: अकेली रात भर कर फिरती फिरती, केवल तुहार याद में भुवर ध्यान करे छो। सखिया और सहेलिन से तुहार के लतारे, यह भी तई मोर राजा कई कसी नहीं छो।

0: साल से जूट के खेती कर लो कहूँ तू जानी जानी
1: तुहर लगता ई मोर सुदो बा खाली खाली मोर लैहर हो कालू तुहार ससुराली हमार मैया प्रेम में आगिल बा बहारी अब तो विश्वास लागल मैं तुहार घर वाली

0: मेरो त घर बनाउने धोको पनि अरूको देख्दा देख्दै सकियो। त्यो हरिदाईको घर हेर्दा राम्रो भएर के गर्नु? धाराका पाइपहरू सबै फुटेर नुहाउने बाथरूम किचन टोयलेट गइसक्नु छैन। मलाई त झन् केही थाहा छैन कस्ता पाइप धारा ठिक हुन्छन्। फेरि त्यति मात्र भएर पनि भएन, छड सिमेन्ट पनि चाहियो। साह्रै तनावको काम रहेछ।
1: हजुर, यस क्षेत्रकै विभिन्न क्वालिटी युक्त हार्डवेयर सामानका लागि ग्रिसमा सप्लायर्स सबैको रोजाइमा रहेको पञ्चकन्याका सिपिबीसी पाइप फिटिङका सामानहरू, धाराका आइटम, अन्तर्राष्ट्रिय ब्रान्डका छड, सिमेन्ट, पानी ट्याङ्की, कम्बट सिटहरू, मार्बल, सोमानी कम्पनीका ट्रायल, होलसेल तथा फुटकर मूल्यमा बिक्री गरिन्छ।
0: हजुरलाई समय पनि कम लाग्ने, हरेक सामानहरू फिट गर्न सजिलो हुने, पाइपहरूमा खिया लाग्ने र चुहिने समस्याको समाधान।
2: सुन्नुहोस् त, हामी कहाँ टाइल, ग्रेनाइट, ड्रेन काडो, बाथ फिटिङ, सेनेटरी र मोडुलर किचन सेट सम्म उपलब्ध छ है।
1: सम्पर्क ग्रिसमा सप्लाइज, बारगंगा बैरिया कपिल वस्तु, फोन 076-550-3317, मोबाइल 98-571-713, सञ्चालक गिरिराज गणेश।
3: लुम्बिनी हस्पिटल एन्ड टेक्निकल कलेज प्राली बुटवलमा आधुनिक विशेषज्ञ स्वास्थ्य सेवा शुरू भएको अनुरोध।
4: बुटोलमै पहिलो पटक शरीरको कुनै अङ्गको लिगामेन्ट च्यातिएको, स्पोर्ट्स इन्जुरीज साथै हाड जोड्नी, नसा तथा ट्रमा वा दुर्घटना सम्बन्धी बिरामीको उपचार बीएनबी हस्पिटल काठमाडौँबाट अर्थोस्कोपी सर्जरी र स्पोर्ट्स इन्जुरीमा फेलोसिप गर्नुभएका डाक्टरबाट आधुनिक विशेषज्ञ सेवा शुरू भएको छ। विशेष गरी हाड जोड्नी भाँचिएको, लिगामेन्ट च्यातिएको बिरामीहरूको अपरेसन दूरबीनको माध्यमबाट गरिन्छ।
3: साथै वीर अस्पताल काठमाडौँका फिजिसियन डाक्टरबाट उपचार सेवा र वरिष्ठ कन्सल्टेन्ट मुटु रोग विशेषज्ञ डाक्टरबाट इको ईसीजी को माध्यमबाट मुटु तथा छाती रोगको उपचार भइरहेको जानकारी गराउँदै पूर्ववत सेवाहरू,
4: नाक कान घाँटी रोग विशेषज्ञ सेवा,
3: स्त्री तथा प्रसूति रोग विशेषज्ञ सेवा,
4: जनरल तथा ल्याप्रोस्कोपिक सर्जरी विशेषज्ञ सेवा,
3: शिशु तथा बाल रोग विशेषज्ञ सेवा,
4: दाँत तथा मुख रोग विशेषज्ञ सेवा,
3: नसा तथा मनोरोग विशेषज्ञ सेवा,
4: हिस्टो साइटो बायोप्सी हार्मोन जाँच गर्ने प्याथोलोजिस्ट डाक्टर सहितको प्रयोगशाला,
3: फिजियोथेरापी विशेषज्ञ सेवा,
4: आईसीयू एनआईसीयू डिलक्स बेड सहितको इन्डोर सेवा सञ्चालन भइरहेकोले निजी क्षेत्रको जेठो एस हस्पिटलबाट विशेषज्ञ स्वास्थ्य सेवा लिनुहुन अनुरोध छ।
3: सम्पर्क लुम्बिनी हस्पिटल एन्ड टेक्निकल कलेज प्राली बुटवल छ, साबिक लुम्बिनी नर्सिङ होम प्राली, फोन 071-531-641 र 535-641।
5: ओहो, देखा जाए न मुस कुदछ।
6: ओहे तो बरसात के समय है, बखार के आना खुले है कि मुस आए तो अब मुस हेरत सपबो आई सकत है।
5: ओहो हाँ, तो सही है, याद हो गवा। घर के आसपास झाल झुंगा बढ़ के बहुत बड़ा हो गवा है, काटेक रहा।
6: हाँ, ऐसा करा जाए तब काल सवेरे पूरी तरकारी नाश्ता करा जाए और सब परिवार मिलकर साफ सफाई करे के हुई और आसपास के फोहर व्यवस्थापन करे के हुई ना।
5: हुआ थे होता है, ऐसे समय पर तो बड़बार घास फुहर गंदगी रहा जगह पर सांप लुकाई के बैठा हो सकत है ना।
6: वही से तो कही है, बिटिया समीरा, बेटवा विवेक, तुहरे सब और हम मिलकर घर के आसपास रहा बड़वार घास काट दिया जाए, काल लाएगा जलावन घरे से कुछ दूर व्यवस्थापन कह दिया जाए, डेहरी के आना सांप मूस न हले के में से मरम्मत कह दिया जाए और घर के आसपास खाली और साफ होए के बाद सांप आवे के अपने कम हो जाए ना।
5: हाँ, काल संचरो हुए सवेरे सब फुर्सते में हो जाते है।
7: सांप बरसात के समय में सूखा जगह पर राहत पसंद करते हैं। यह मौसम में अपने बास स्थान पर पानी चल जाए नाते सूखा जगह के खोजी में वो लोग बाहर निकलते हैं।
8: मूस मुर्गी जैस चारा के खोजी कार्यक्रम में सांप मानव बस्ती नेरे आए सकत है।
7: विश्वसनीय और सही जानकारी प्राप्त करे और नक्चेरे के उपचार केंद्र कहाँ है कहके पता लगाए आधिकारिक वेबपेज snakebitenepal.org में जाके आवश्यक जानकारी ले सका जाते है।
9: नेपाल सरकार, स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मंत्रालय, इपिडियोमोलोजी तथा रोग नियंत्रण महाशाखा र राष्ट्रीय स्वास्थ्य शिक्षा सूचना तथा संचार केन्द्र, विश्व स्वास्थ्य संगठन नेपाल, WWF नेपाल का साथै बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान सम्बद्ध सर्पदंश अनुसन्धान केन्द्र संघको सहकार्यमा रोटरी इन्टरनेशनल एवं रोटरी क्लब अफ काठमाडौँ मिटटाउनका साथसाथै विश्वभरका रोटरी फ्रेन्ड्स एवं पार्टनर क्लबहरूद्वारा जनहितका लागि प्रस्तुत सन्देश।

ग्रुप राइटर दिल बहादुर खाती संपर्क नंबर 98571569 अर्जुन खाती संपर्क नंबर 98571878।

0: अब जय के घर के दीवार लिपोती गए और आए लाग।
1: मुस्कान बिटिया, ए मुस्कान बिटिया, घर के दीवार लिपोत के नाई खत्म भवा, खेत में काम करे वाले का नहारी लेके जाए के रहा।
0: और आए लाग अम्मा।
1: ए अच्छा, हम नहारी बनाए के धई दे थे, अब भी लेके चली जाओ।
0: हो थे अम्मा। ओहो, यही देवालिया में दिल है, माटी से बंद कर दे पड़ा के काओ। हाँ, अब बंद कर दे थे।
2: अरे बापा रे अम्मा, हमें साफ दसी।
1: अरे बाप रे बाप, कहाँ डसलीस बिटिया?
2: यही दही रहे हाथ में डसलीस अम्मा।
1: अरे अरे क्यों क्यों, अरे है क्यों, हमने मुस्कान बिटिया का साफ डसलीस, अरे क्यों है क्यों है?
3: अरे कहाँ हुई गवा काकी?
1: राकेश बाबू देखो ना, मुस्कान का साफ डसलीस की काओ।
3: ना घबरा बजाय काकी, मुस्कान ना घबराओ, शांत हुई के बैठी रहो काकी, बल्कि मुस्कान का सीधा सुता बजाए और ना हिला बजाए।
1: वो थे बाबू, मुस्कान मुस्कान बेटा सीधा हुई के सुतो।
0: होता है
3: काकी, आप मुस्कान के पहिरा कपड़ा और गर गहना ढीला कह दिया जाए, न कस जाए के मेर से और हाथ के चूड़िया खोल दिया जाए, दस लिया ओकर हाथ न चलाव जाए।
1: हो थे बाबू, और सात दस लिया जगह के आसपास काट के इंजेक्शन से तान के या मुंह से चूस के पीस निकाले के होए की?
3: नहीं काकी नहीं, सात दस लिया घाव के आसपास काटे जारे चूसे के काम नहीं करे चाहिए, और कुछ नहीं खियावे चाहिए, पनियों नहीं, बुझा गए ना?
1: तब तो गहर मोहरा लाई के सपवा दस लिया जगह पर लगाई दे तो बाबू।
3: वो नहीं काकी, घरेलू उपचार जैसे कि जहर मोहरा, जंगली घास पात और जड़ी बूटी के प्रयोग नहीं करे चाहिए, बुझा गए ना?
1: बुझेन बाबू बुझेन।
3: काकी बल्कि रमेश का मोटरसाइकिल लेके आवे कहा जाए ना, जल्दी से जल्दी साधन खोज के एंटी बहनम दई जाए वाले स्वास्थ्य उपचार केंद्र में ले जाए मिला तो मुस्कान का जल्दी ठीक हो जाये। कहा जाए तब तक हमरे के गाँव से कौन एंटी बहनम केंद्र नजदीक पड़त है, हम snakebitenepal.org के वेबसाइट में खोजित है। हाँ डाटा हम पे के देखे करा। हाँ देव snakebitenepal.org वेबसाइट खुली गवा, हमरे इनके गांव से तो गुरु सिंह सर्पदंश उपचार केंद्र में सर्पदंश के उपचार कह जाते हैं, मुस्कान का वहीं ले जाके पड़ा।
1: राकेश बाबू मोटरसाइकिल लेके रमेश आ गए।
3: काकी हम मुस्कान का न हिलाए के मोटरसाइकिल के सीट के बीच में बैठाए के अपने पीछे से पकड़ के बैठा जाए, जल्दी से जल्दी सर्पदंश उपचार केंद्र में पहुँचाई मिला तो मुस्कान का बताए सका जाता है।
1: जी वो थे बाबू, चलो
4: याद रखा जाए, साफ दस लिए के बाद मोटरसाइकिल स्वयं सेवी बुलावा जाए, सर्पदंश उपचार केंद्र ले जाए के जान बचावा जाए, या कोनो सवारी साधन उपलब्ध न रहा अवस्था में वेबसाइट से स्वास्थ्य कर्मी के फोन पता लगाए के फोन से सुझाव लिया जाए।
5: वही मेर से मरीजों का सांप से सावधान रह के चाहिए, मरीगवा सांप का झटपट छुए और चलावे के नहीं चाहिए, कबो काल सांप मरीगवा है सोचा जाता है लेकिन वो डस सकत है, संभव हो तक डसे वाला सांप के फोटो खींच के डॉक्टर अथवा स्वास्थ्य कर्मी का दिखाए पर वो लोग का सांप विषालु है कि नहीं पहचान करके सही उपचार करे में सहयोग करत है।
4: सही समय पर उपचार किए पर सांप दस लिए व्यक्ति का बचाई सका जाता है और ऐसे हो सके वाला मृत्यु दर कम कर सका जाता है, सांप दस लिया व्यक्ति का जल्दी से जल्दी उपचार केंद्र में ले जावा जाए, ऐसे वह व्यक्ति के जीवन बचावे की मदद करत है। विश्वसनीय और सही जानकारी प्राप्त करे के और नक्सरवे के उपचार केंद्र कहाँ है पता लगावे के खातिर आधिकारिक वेब पेज www.snakebitenepal.org में जाए के आवश्यक जानकारी ले सका जात है।
6: नेपाल सरकार, स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मंत्रालय, इपिडियोमोलोजी तथा रोग नियंत्रण महाशाखा र राष्ट्रीय स्वास्थ्य शिक्षा सूचना तथा संचार केन्द्र, विश्व स्वास्थ्य संगठन नेपाल, WWF नेपाल का साथै बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान सम्बद्ध सर्पदंश अनुसन्धान केन्द्र संघको सहकार्यमा रोटरी इन्टरनेशनल एवं रोटरी क्लब अफ काठमाडौँ मित्रहरूका साथ साथै विश्वभरका रोटरी फ्रेन्ड्स एवं पार्टनर क्लबहरूद्वारा जनहितका लागि प्रस्तुत सन्देश।
7: खुशीको खबर, विगत 4 दशक देखि बुटवलमा निरन्तर सेवा दिँदै आइरहेको आले डेन्टल अब कपिलवस्तुको 4 नम्बर जितपुरमा यही श्रावण 4 गते देखि शुभारम्भ भई सञ्चालनमा आइरहेको छ।
8: शुभारम्भको अवसरमा विशेष छुट। थप जानकारीका लागि आले डेन्टल बाढगंगा 1 जितपुर कपिलवस्तु एभरेस्ट बैंक नजिकै।
9: युनाइटेड अस्पताल बाढगंगा 4 ठाकुरापुर कपिलवस्तुमा बिरामीहरूका लागि थप नयाँ सुविधाहरू।
10: कन्सल्टेन्ट फिजिसियन डाक्टर गोविन्द रावत, छाती तथा श्वास प्रश्वास सम्बन्धी समस्या, मुटु रोग, मृगौला रोग, पेट र आन्द्राको समस्या, कलेजो, थाइराइड र मधुमेह सहितका रोगहरूको पूर्ण परामर्श र उपचार।
9: हाड जोड्ने नसा तथा बाथरोग विशेषज्ञ डाक्टर समीर खानद्वारा हाड जोड्ने सम्बन्धी समस्या, हड्डी भाँचिएको, रदहरू राख्ने निकाल्ने, नसा च्यातिएको लगायत बाथरोग विशेषज्ञ सेवा बिहान 10 बजेदेखि साँझ 6 बजेसम्म शनिबार बाहेक प्रत्येक दिन परामर्श तथा उपचार सेवा उपलब्ध छ।
11: वरिष्ठ जनरल तथा ल्याप्रोस्कोपिक सर्जन डाक्टर सन्तोष पौडेलद्वारा यस युनाइटेड अस्पतालमा विशेषज्ञ शल्य चिकित्सा तथा परामर्श सेवा उपलब्ध रहेको छ। पित्त थैलीमा पत्थरी, हर्निया, एपेन्डिक्स आदिको दूरबीन प्रविधिद्वारा अपरेशन, स्तनमा गाँठागुठी, थोका, घाउ, पाइल्स तथा अन्य शल्यक्रिया सम्बन्धी समस्या भएका बिरामीहरूले शनिबार बाहेक प्रत्येक दिन 10 बजेदेखि 5 बजेसम्म विशेषज्ञ डाक्टरसँग परामर्श तथा आवश्यक उपचार सेवा लिन सक्नुहुनेछ।
12: वरिष्ठ प्रसूति तथा महिला रोग विशेषज्ञ ल्याप्रोस्कोपी सर्जन डाक्टर सन्देश आचार्यद्वारा गर्भवती महिलाको नियमित जाँच, डेलिभरी तथा शल्यक्रिया, पाठेघर सम्बन्धी सम्पूर्ण शल्यक्रिया, दूरबीन प्रविधिद्वारा अपरेशन, परिवार नियोजन तथा बन्ध्याकरण सेवा, महिनावारी गडबडी, सल्दो पेट दुख्ने तथा फोहोर पानी बग्ने समस्याको उपचार, बाजोपन, पाठेघरको क्यान्सरको जाँच तथा परामर्श।
13: वरिष्ठ एनोस्थेसियोलोजिस्ट डाक्टर सुमन श्रेष्ठद्वारा क्रिटिकल केयर परामर्श तथा उपचार सेवा।
11: अन्य ओपिडी सेवा शनिबार बाहेक प्रत्येक दिन बिहान 10 बजेदेखि साँझ 6 बजेसम्म सुन्नुहोस् त मेडिकल अफिसर डाक्टर योगेन्द्र थापा र डाक्टर रोशन कुमार यादवद्वारा 24 घण्टा इमर्जेन्सी सेवा उपलब्ध छ।
10: युनाइटेड अस्पताल बाढगंगा 4 ठाकुरापुर कपिलवस्तु, सम्पर्क 076-550-200, मोबाइल नम्बर 98-570-55-138।
9: अब ढुक्क हुनुहोस्, विशेषज्ञ डाक्टरको सल्लाह लिनुहोस् युनाइटेड अस्पतालमै।
14: हरेक गहनामा लुकेको हुन्छ एउटा सुन्दर सम्झना, विवाहको खुसी, तिजको लाज अनि मायाको चिनो,
15: ती अविस्मरणीय क्षणलाई अझ विशेष बनाउन आउनुहोस् जय सुपा देउराली सुनचानी पसल बाढगंगा 2 पिपरा कपिलवस्तु।
16: उचित मूल्य र आत्मीय सेवा, पुराना गहना साटेर नयाँ बनाउने सुविधा, कम्प्युटराइज बिल र भरपर्दो ग्यारेन्टी।
15: जय सुपा देउराली सुनचानी पसल, विश्वासले रोज्ने नाम, सौन्दर्यले चिन्ने पहिचान, बाढगंगा 2 पिपरा कपिलवस्तु। सम्पर्क नम्बर 98-570-56-249 र 98-075-18-346।
17: चाँदीका आकर्षक डिजाइनका गरगहना किन्ने सोचमा हुनुहुन्छ? अब तपाईँको रोजाइको पहिलो गन्तव्य बनेको छ लुम्बिनी खाती सुन चाँदी पसल।
14: पुराना सुन चाँदी साट्न, नयाँ गरगहना बनाउन तथा आफूले चाहेको डिजाइन अनुसार अर्डर गर्न अवश्य सम्झनुहोस्
18: लुम्बिनी खाती सुन चाँदी पसल, बाढगंगा 4 जितपुर कपिलवस्तु।
14: प्रोपराइटर दिन बहादुर खाती, सम्पर्क नम्बर 98-570-31-569। अर्जुन खाती, सम्पर्क नम्बर 98-570-78-403।
11: होइन ए दाइ, कता हो लखर लखर बाइक डोराउँदै?
19: कहाँ हुनु र भाइ, यो बाइक बनाउँदा बनाउँदा हैरान परे म त। आज पनि अफिस जाने बेला बिग्रियो, नयाँ किनौ भने पुरै पैसा छैन।
11: चिन्ता लिनु पर्दैन, बिग्रेको बनाउन होस् या नयाँ बाइक लिन, केदारनाथ अटोमोबाइल्स प्रणाली छँदैछ नि। त्यहाँ त जेनुइन पार्ट्सको प्रयोग गरी अनुभवी तथा दक्ष प्राविधिकद्वारा बाइक तथा स्कुटर मर्मतको सुविधा छ। अनि नयाँ किन्न पैसा छैन, चिन्ता लिनु पर्दैन। नागरिकताको भरमा 0% सेवा शुल्क सहित 5 वर्षसम्मको सजिलो फाइनेन्सको सुविधा पनि उपलब्ध छ।
20: जेनुइन नै ठिक छ, जेनुइन नै ठिक छ।
21: हजुर, जुनसुकै पुरानो बाइक लिएर आउनुहोस्। बजाजको नयाँ डोमिनार, पल्सर, प्लाटिना, एनएस बाइक वा चेतक स्कुटर चढेर जानुहोस्।
11: अनि सुन्नुहोस् त, यहाँ हरेक दिन एक्सचेन्जको सुविधा पनि उपलब्ध छ।
20: पुरानो बाइक मर्मत गर्न होस् या नयाँ बाइक खरिद गर्न, सम्झनै पर्ने ठाउँ
11: बजाजको आधिकारिक विक्रेता केदारनाथ अटोमोबाइल्स प्रणाली, बारगंगा एक बैरिया, कपिल वस्तु।
21: थप जानकारीका लागि सम्पर्क नम्बर 98570-50243, 98026-25243 र 98013-51417।
22: पाल्पा भैरव मेडिकल हल बुटवलको अत्यन्त जरुरी सूचना।
23: विगत 25 वर्षदेखि मुटु तथा छाती र छाला रोगको सफल उपचार सेवा सञ्चालन गर्दै आइरहेकोमा यही असोज 25 गतेदेखि काठमाडौँ B&B हस्पिटलका हाडजोर्नी नसा तथा लिगामेन्ट विशेषज्ञ र आमदा अस्पतालका बाल रोग विशेषज्ञ डाक्टरद्वारा समेत बिरामी जाँच गरिने भएकोले उल्लेखित समस्या भएका बिरामीहरूले सम्पर्क गर्नुहुन अनुरोध छ।
22: ब्लड प्रेसर, सुगर, थाइराइड, मुटु रोग, छाती रोग, ग्यास्ट्रिक, अल्सर, निमोनिया, चक्कर लाग्ने, लुटो, दाज, पुतले, दुबे, चाया, डन्डीफोर, पुरानो घाउ खटिरा, यौन दुर्बलता, सेतो पानी बग्ने, यौनाङ्गका घाउ खटिरा, कपालको रौँ झरिरहने, हाडजोर्नीका समस्याहरू, प्यारालाइसिस, जोर्नीहरू दुख्ने, नचल्ने, नसा च्यापिएको, ढाड कम्मर दुख्ने, मेरुदण्ड र घुँडाको समस्या, लिगामेन्ट च्यातिएको, भाँचिएको, हाडजोर्नीका विशेष अपरेसन र बालरोगसँग सम्बन्धित सबै समस्याहरूको विशेषज्ञ चिकित्सकहरूद्वारा जाँच तथा उपचार गरिन्छ।
23: सम्पर्क पाल्पा भैरव मेडिकल हल, श्रवण पथ, बुटवल, साझा हस्पिटलको अगाडि।
22: सम्पर्क नम्बर 0175349050, 0175553905 र मोबाइल 98570-78010।

0: प्रकार को रसायन केमिकल नमिसाइएको शुद्ध र प्राकृतिक स्वास्थ्यश्री चितवनको अत्याधुनिक मिलमा उत्पादित शुद्ध तोरीको तेल स्वास्थ्यश्री रिलायबल एग्रो नेपाल पब्लिक लिमिटेडका प्रिमियम उत्पादन
1: तरकारी बालीमा पकेट विकास कार्यक्रम माग सम्बन्धी सूचना बाणगंगा नगरपालिका कृषि विकास शाखा कपिलवस्तुबाट आर्थिक वर्ष 2083-84 संघीय सरकार सशर्त अनुदान तर्फको साना व्यवसायिक कृषि उत्पादन केन्द्र पकेट विकास कार्यक्रम अन्तर्गत तरकारी बालीमा पकेट विकास कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्ने भएकोले उक्त कार्यक्रम सञ्चालन गर्न चाहने यस नगरपालिका अन्तर्गतका कृषक समूह कृषि सहकारी संस्था समिति तथा कृषि फर्महरूले यो सूचना प्रकाशित भएको मितिले 30 दिन मिति 2083/6/9 भित्र राष्ट्रिय कृषि आधुनिकीकरण कार्यक्रम कार्यान्वयन म्यानुअलको अनुसूची 6 अनुसारको आवेदन तथा अनुसूची 7 अनुसारको आधारभूत तथ्याङ्क फारम भरी नगरपालिकामा निवेदन पेश गर्नुहुन यसै सूचनाद्वारा जानकारी गराइन्छ। पकेट कार्यक्रम सञ्चालनका लागि न्यूनतम मापदण्ड तरकारी बाली न्यूनतम 20 हेक्टर क्षेत्रफल हुनुपर्नेछ।
2: निवेदनका साथ पेश गर्नुपर्ने कागजातहरू कृषक समूह कृषि सहकारी समिति कृषि फर्म मिति 2083 श्रावण मसान्तसम्म दर्ता भएको दर्ता प्रमाण पत्रको प्रतिलिपि नियम अनुसार नवीकरण सूचीकृत भएको कार्यक्रम सञ्चालन हुने स्थान जग्गाको लालपूर्जाको प्रतिलिपि भाडाको जग्गा भए कम्तीमा 5 वर्षको सम्झौता पत्र कृषक समूह कृषि सहकारी समिति कृषि फर्मको पकेट मागको निर्णयको प्रतिलिपि ओडा कार्यालयको सिफारिस पत्र कर चुक्ता प्रमाण पत्रको प्रतिलिपि अध्यक्ष प्रोप्राइटरको नागरिकता वा परिचय खुल्ने प्रमाण पत्रको प्रतिलिपि अनुसूची 6 अनुसारको निवेदन तथा अनुसूची 7 अनुसारको विवरण
1: पुनश्च राष्ट्रिय कृषि आधुनिकीकरण कार्यक्रम कार्यान्वयन म्यानुअल यस नगरपालिकाको वेबसाइट www.bargangamunicipalitygovernment.np बाट हेर्न र डाउनलोड गर्न सकिनेछ। विस्तृत जानकारीका लागि बाणगंगा नगरपालिका कृषि विकास शाखा कपिलवस्तुमा सम्पर्क गर्नुहोला। सम्पर्क नम्बर 98413-52747 98857-62979। अनुरोधक बाणगंगा नगरपालिका नगर कार्यपालिकाको कार्यालय कृषि विकास शाखा बाणगंगा कपिलवस्तु।
3: लुम्बिनी प्रदेशवासीका लागि अत्यन्तै जरुरी सूचना।
4: जल तथा मौसम विज्ञान विभागको विशेष मौसम बुलेटिन अनुसार 2083 साल असोज 9 गतेदेखि 11 गतेसम्म लुम्बिनी प्रदेशका विभिन्न स्थानमा हावाहुरी मेघगर्जन तथा चट्याङ सहित भारीदेखि धेरै भारी वर्षा हुने सम्भावना रहेको छ। यस अवधिमा बाढ़ी पहिरो डुबान तथा अन्य विपदका घटना हुन सक्ने जोखिम रहेकाले सम्पूर्ण प्रदेशवासीलाई विशेष सतर्कता अप्नाउन अनुरोध गरिन्छ। भारी वर्षाका कारण नदी खोला तथा खोल्चामा पानीको बहाव अचानक बढ़न सक्छ। तल्लो तथा डुबान सम्भावित क्षेत्रमा बसोबास गर्ने नागरिकले विशेष सावधानी अप्नाउनुहोस्। चट्याङ र मेघगर्जनका समयमा खुला स्थान खेतीबारी नदी तथा खोला किनारमा नबस्नुहोस्। सकेसम्म घरभित्र सुरक्षित स्थानमा रहनुहोस्। अनावश्यक यात्रा नगर्नुहोस्। मौसम सम्बन्धी सूचना तथा चेतावनीलाई नियमित रूपमा ध्यान दिनुहोस् र स्थानीय प्रशासन सुरक्षा निकाय तथा सम्बन्धित निकायले जारी गरेका निर्देशनको पालना गर्नुहोस्।
5: अनुरोध लुम्बिनी प्रदेश सरकार आन्तरिक मामिला कानून उद्योग तथा यातायात मन्त्रालय राप्ती उपत्यका देवखुरी।
6: अम्मा राप्ती कहाँ जाओ जाते
7: हिसाब लाग रहा सर पिसात रहे
6: ए रुका जाए तब हम टॉर्च लाइट और डंडा लाए देते लेके जावा जाए
7: काहे बिटिया डंडा और टॉर्च लाइट।
6: अम्मा रात के समय में बहरे निकलत के या टॉयलेट जात के हमेशा टॉर्च लाइट बार के और लम्बा डंडा लेके घर जाए चाहिए काहे कि बरसात के समय है आसपास साफ हो सकत है। टॉर्च के अंजोर से साफ दिखाई दे है और डंडा के टक टक आवाज सुन के भाग दे है।
7: हाँ बेटिया तू कितना बढ़िया सलाह दे है।
6: अम्मा हमरे के स्कूल में मैडम सर लोग साफ लुकाए सके वाला जगह के आसपास से चलक पड़े या काम करे पड़ा तो हमेशा होशियार होए के चाहिए कहके सिखाएं है। और धान खेत झाड़ी अथवा बड़वार घास रहा जगह पर चलक पड़ा तो लम्बा डंडा लाठी लेके टक टक आवाज करत चलक चाहिए कहीं है।
8: बरसात के समय में सांप सूखा जगह पर रह के पसंद करत हैं। अपने वास स्थान में पानी हल जाए के नाते सूखा जगह के खोजी में वो लोग बहरे निकल सकत है।
9: मूस मुर्गी जिस चारा के खोजी करे क्रम में सांप मानव बस्ती नेरे आए सकत हैं।
10: विश्वसनीय और सही जानकारी प्राप्त करे और नक्चेरे के उपचार केंद्र कहाँ है कहके पता लगाए आधिकारिक वेबपेज snakebitenepal.org में जाके आवश्यक जानकारी ले सका जाता है।
11: नेपाल सरकार स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मंत्रालय इपिडियोमोलॉजी तथा रोग नियंत्रण महाशाखा र राष्ट्रीय स्वास्थ्य शिक्षा सूचना तथा संचार केन्द्र विश्व स्वास्थ्य संगठन नेपाल WWF नेपाल का साथै बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान सम्बद्ध सर्पदंश अनुसन्धान केन्द्र संघको सहकार्यमा रोटरी इन्टरनेशनल एवं रोटरी क्लब अफ काठमाडौं मिटाउनका साथसाथै विश्वभरका रोटरी फ्रेन्ड्स एवं पार्टनर क्लबहरूद्वारा जनहितका लागि प्रस्तुत सन्देश।

0: बुद्ध आवाज 89.6 मेगाहर्जमा सुन्न नभुल्नु होला।
1: यति बेला साँझको 7 बज्यो।

0: अब जय के घर के दीवार लिपोती गए और आए लाग।
1: मुस्कान बिटिया, ए मुस्कान बिटिया, घर के दीवार लिपोत के नाई खत्म भवा, खेत में काम करे वाले का नहारी लेके जाए के रहा
0: और आए लाग। अम्मा
1: ए अच्छा, हम नहारी बनाए के धाई दे थे, अब भी लेके चली जाओ।
0: होते अम्मा, ओहो यही देवालिया में दिल है, माटी से बंद कर दे पड़ा की काओ। हाँ अब बंद कर दे थे।
2: अरे बापा रे, अम्मा हमें साफ दसरी।
1: अरे बाप रे बाप, कहाँ दसरी बिटिया?
2: यही दही दे, हाथ में दसरी अम्मा।
1: अरे अरे क्यों क्यों, अरे है क्यों, हमने मुस्कान बिटिया का साफ दसरी, अरे क्यों है क्यों है?
3: अरे कहा काकी
1: राकेश बाबू, देखो ना मुस्कान का साफ दसली की काओ।
3: न घबराओ जय काकी, मुस्कान न घबराओ, शांत हुई के बैठी रहो काकी, बल्कि मुस्कान का सीधा सुता बजाए और न हिला बजाए।
1: वो थे बाबू मुस्कान, मुस्कान बेटा सीधा हुई की सुतो
0: होता है।
3: काकी आप मुस्कान के पहिरा कपड़ा और गर गहना ढीला कह दिया जाए, न कस जाए के मेर से और हाथ के चूरिया खोल दिया जाए, दस लिया ओकरा हाथ न चलाव जाए।
1: हो थे बाबू, और साफ दस लिया जगह के आसपास काट के इंजेक्शन से तान के या मुंह से चूस के विष निकाले के होए की?
3: नहीं काकी नहीं, साफ दस लिया घाव के आसपास काटे जारे चूसे के काम नहीं करे चाहिए, और कुछ नहीं खियावे चाहिए, पनियों नहीं, बुझा गए ना?
1: तब तो गहर मोहरा लाई के सपवा डसी लिए जगह पर लगाई दे तो बाबू।
3: वो नहीं काकी, घरेलू उपचार जैसे कि जहर मोहरा, जंगली घास पात और जड़ी बूटी के प्रयोग नहीं करे चाहिए, बुझा गए ना?
1: बुझेन बाबू बुझेन।
3: काकी बल्कि रमेश का मोटरसाइकिल लेके आवे कहा जाए ना, जल्दी से जल्दी साधन खोज के एंटी वेनम दई जाए वाले स्वास्थ्य उपचार केंद्र में ले जाए मिला तो मुस्कान का जल्दी ठीक हो जाए। कहा जाए तब तक हमरे के गांव से कौन एंटी वेनम केंद्र नजदीक पड़ता है, हम snakebitenepal.org के वेबसाइट में खोजित है। हाँ डाटा हम पे के देखे करा। हाँ लियो snakebitenepal.org वेबसाइट खुली गवा, हमरे के गाँव से तो गुरु सिंह सर्पदंश उपचार केंद्र में सर्पदंश के उपचार कई जात है, मुस्कान का वहीं ले जाके पड़ा।
1: राकेश बाबू मोटरसाइकिल लेके रमेश आई गए।
3: काकी हम मुस्कान का न हिलाए के मोटरसाइकिल के सीट के बीच में बैठाए के अपने पीछे से पकड़ के बैठा जाए, जल्दी से जल्दी सर्पदंश उपचार केंद्र में पहुँचाए मिला तो मुस्कान का बताए सका जाता है।
1: जी वो थे बाबू, चलो
4: याद रखा जाए साफ डसलिए के बाद मोटरसाइकिल स्वयं से भी बुलावा जाए, सर्पदंश उपचार केंद्र ले जाए के जान बचावा जाए, या कोनो सवारी साधन उपलब्ध न रहा अवस्था में वेबसाइट से स्वास्थ्य कर्मी के फोन पता लगाए के फोन से सुझाव लिया जाए।
5: वही मेर से मरीजों का सांप से सावधान रह के चाहिए, मरीगवा सांप का झटपट छुए और चलावे के नहीं चाहिए, कबो काल सांप मरीगवा है सोचा जाता है लेकिन वो डस सकत है, संभव हो तक डसे वाला सांप के फोटो खींच के डॉक्टर अथवा स्वास्थ्य कर्मी का दिखाए पर वो लोग का सांप विषालु है कि नहीं पहचान करके सही उपचार करे में सहयोग करत है।
4: सही समय पर उपचार किए पर सांप डस लिए व्यक्ति का बचाई सका जात है और ऐसे हो सके वाला मृत्यु दर कम कर सका जात है, सांप डस लिया व्यक्ति का जल्दी से जल्दी उपचार केंद्र में ले जावा जाए, ऐसे वह व्यक्ति के जीवन बचावे की मदद करत है। विश्वसनीय और सही जानकारी प्राप्त करे के और नक्सरवे के उपचार केंद्र कहाँ है पता लगावे के खातिर आधिकारिक वेब पेज www.snakebitenepal.org में जाए के आवश्यक जानकारी ले सका जात है।
6: नेपाल सरकार, स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मंत्रालय, इपिडियोमोलॉजी तथा रोग नियंत्रण महाशाखा र राष्ट्रीय स्वास्थ्य शिक्षा सूचना तथा संचार केन्द्र, विश्व स्वास्थ्य संगठन नेपाल, WWF नेपाल का साथै बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान सम्बद्ध सर्पदंश अनुसन्धान केन्द्र संघको सहकार्यमा रोटरी इन्टरनेशनल एवं रोटरी क्लब अफ काठमाडौँ मित्रहरूका साथसाथै विश्वभरका रोटरी फ्रेन्ड्स एवं पार्टनर क्लबहरूद्वारा जनहितका लागि प्रस्तुत सन्देश।
7: बाप बाणगंगा नगरपालिका पशु सेवा शाखाको अत्यन्तै जरुरी सूचना। बाणगंगा नगरपालिका पशु सेवा शाखाले विश्व रेबिज दिवस अन्तर्गत सञ्चालन गर्ने कुकुर तथा बिरालोलाई निशुल्क रेबिज खोप लगाउने कार्यक्रम मौसम पूर्वानुमानमा शाखाबाट जारी नागरिक सतर्कता सम्बन्धी सूचनालाई मध्यनजर गर्दै अर्को सूचना नभएसम्मका लागि स्थगित गरिएको छ। अनुरोधक बाणगंगा नगरपालिका पशु सेवा शाखा बाणगंगा कपिलवस्तु।
8: होइन ए दाई, कता हो लखर लखर बाइक डोराउँदै?
9: कहाँ हुनु र भाइ, यो बाइक बनाउँदा हैरान परे म त। आज पनि अफिस जाने बेला बिग्रियो, नयाँ किनौ भने पुरै पैसा छैन।
8: चिन्ता लिनु पर्दैन, बिग्रेको बनाउन होस् या नयाँ बाइक लिन, केदारनाथ अटोमोबाइल्स प्रणाली छँदैछ नि, त्यहाँ त जेनुइन पार्ट्सको प्रयोग गरी अनुभवी तथा दक्ष प्राविधिकद्वारा बाइक तथा स्कुटर मर्मतको सुविधा छ। अनि नयाँ किन्न पैसा छैन, चिन्ता लिनु पर्दैन, नागरिकताको भरमा 0% सेवा शुल्क सहित 5 वर्षसम्मको सजिलो फाइनेन्सको सुविधा पनि उपलब्ध छ।
10: जेनुइन नै ठिक छ, जेनुइन नै ठिक छ।
11: हजुर, जुनसुकै पुरानो बाइक लिएर आउनुहोस्। बजाजको नयाँ डोमिनार, पल्सर, प्लाटिना, एनएस बाइक वा चेतक स्कुटर चढेर जानुहोस्।
8: अनि सुन्नुहोस् त, यहाँ हरेक दिन एक्सचेन्जको सुविधा पनि उपलब्ध छ।
10: पुरानो बाइक मर्मत गर्न होस् या नयाँ बाइक खरिद गर्न, सम्झनै पर्ने ठाउँ
8: बजाजको आधिकारिक विक्रेता केदारनाथ अटोमोबाइल्स प्रणाली, बाणगंगा एक बैरिया कपिलवस्तु।
11: थप जानकारीका लागि सम्पर्क नम्बर 9857050243, 9806225243 र 9813541417।